0: மூலம் இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: E20 பெட்ரோல் பத்தி ஏன் இவ்ளோ கன்ஃபியூஷன்?
1: கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம். E20 டெஸ்டிங்ல அப்நார்மல் இன்ஜின் வியர் எதுவும் கண்டுபிடிக்கல. ஃபியூயல் சிஸ்டம் மெட்டீரியல்ஸும் E20 கம்பாட்டிபிலிட்டிக்கு டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க.
0: அப்போ கன்ஃபியூஷன் இல்ல, only கான்ஃபிடன்ஸ்.
1: E20 ஃபாக்ஸ் நம்புங்க. இந்திய அரசின் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்களால் பொதுநலன் கருதி வெளியிடப்பட்டது.
2: सुनती हो? कमाल ही हो गया.
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया.
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ.
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है.
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया. सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू सा

साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमथा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा, मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना

0: ये उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया, ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में सीडी और डीवीडी के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओ, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर

0: में रख दिया और बच्चों से कहा,
1: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
0: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
2: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
0: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
1: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
0: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
2: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
0: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
2: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
0: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
3: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
0: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
2: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
0: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
4: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
5: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
7: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
8: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
1: बिल्कुल ठीक
0: है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
2: वीर जोरावर की
3: जय।
2: वीर जोरावर की
3: जय।
2: जय जेरापुर जय भारत।
3: जय जेरापुर जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
2: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
7: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह दरबार खास
8: में। आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
8: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
8: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
8: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
8: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
8: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
9: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक

0: हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
3: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
4: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
4: जो हुकुम सरकार।

0: But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे. हटो यहाँ से.
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
4: हुजूर.
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
0: फौजियों, ले चलो इसको.
3: छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे.
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया. उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए. तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े.
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया. लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था. उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी. वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे.
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा.
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता.
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा.
1: ये नामुमकिन है.
7: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते. हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे. अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है.

0: உங்கள் முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में, कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में। 1971 वॉर वेटरन है कर्नल कंवर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था, आर्मी से आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया।
1: मैं अपने बारे में बताने से साथ ये मैं कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी,
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर मेरा एंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
0: जी,
1: और वहां भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह खत्म किया और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था
0: जी,
1: एक जमींदार फैमिली से
0: जी
1: होने के नाते कॉलेज से भागकर,
0: अच्छा,
1: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
0: जी,
1: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर किस प्रकार से नौकरी करें
0: जी। सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहां से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि
1: ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
0: अच्छा।
1: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अर्सरू में
0: जी,
1: उस समय मेरा एंगेजमेंट हो गया।
0: अच्छा।
1: और एंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करे। अच्छा। अभी कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
0: अरे वाह।
1: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे

0: पिताजी को कि
1: जी,
0: हम
1: तो बहुत
0: भवन
1: नाराज
0: में जा रहे
1: होंगे
0: हैं, तो पूरा परिवार बहुत नाराज था।
1: जी।
0: और पिताजी ने आकर के काफी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज
1: जी
0: जो अभी नहीं है,
1: जी
0: वो उनके ताऊ जी वहां पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे
1: अच्छा
0: सोल्जर बोर्ड में। और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ
1: जी
0: तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने
1: अच्छा
0: बड़े रौब से बगैर ज्यादा कुछ बोलते हुए अपने
1: जी
0: फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और गर्दन
1: जी
0: नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली।
1: जी तो
0: तो
1: आप
0: मैं
1: डिटरमिन्ड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी है।

0: रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
1: एक्चुअली ये था कि 10th करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है
0: जी
1: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि
0: जी
1: आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए.
0: जी
1: एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग
0: जी
1: कि इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती.
0: अच्छा सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
1: इट वॉज 1961.
0: 61।
1: या एंड आई वॉज पोस्टेड रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर,
0: अच्छा
1: और वहां पे इतना ज्यादा तगड़ा हुआ. और
0: अच्छा
1: जो मेरे वुड बी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
0: मर्जी के
1: मोदी के
0: जी।
1: तो वहां जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा
0: अच्छा
1: दो.
0: अच्छा अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि आप पीछे हट जाएं।
1: और जिस काम से मैं भागा था,
0: जी
1: जिससे शादी ना करने के डिले करने
0: जी
1: की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट ही ट्रेनिंग कर रहा था
0: जी
1: तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके और मेरी शादी भी हो गई.
0: अच्छा
1: वेन सी वॉज 14 ईयर्स एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओनली,
0: ओके
1: बिकॉज आई ज्वाइन द आर्मी वेन माई एज वॉज ओनली 17 ईयर 216 डेज.
0: अच्छा आप पूरे 18 की भी तब तक नहीं हुए थे
1: जी
0: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था।
1: जी
0: जी तो सर, शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी? इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
1: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम
0: सिग्नल्स में
1: जवान थे तो
0: जी।
1: वहां हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में
0: अच्छा
1: जालंधर,
0: ठीक है
1: जालंधर 11 कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई. एंड
0: जी
1: व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार
0: अच्छा
1: हुआ,
0: जी
1: सो
0: जी
1: दैट टाइम हम जवान थे तो
0: अच्छा
1: पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी
0: जी
1: तहलका मचा हुआ था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहां पे. और 62 का ऑपरेशन के बाद में
0: जी
1: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ,
0: अच्छा
1: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
0: जी
1: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सिलेक्ट करके
0: अच्छा
1: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका
0: जी
1: इंटरव्यू कैंडिडेट करके और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय
0: जी
1: उनको स्क्रीन आउट करना था कि इनको हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें.
0: अच्छा
1: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो
0: जरूर सर जरूर, हमारे
1: कि
0: लिसनर्स
1: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में
0: ऑफिस
1: भेजते
0: में भेजा
1: रहिए
0: जाए
1: और इनके
0: जी
1: डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फुल.
0: जी
1: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊंगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू करेंगे.
0: अच्छा
1: 3 बजे वो सही डॉट 3 बजे वापस आ गए तो
0: जी
1: फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर.
0: अच्छा
1: तो सीओ आस्क्ड हिम कि
0: अच्छा
1: व्हाट इज द टाइम, 3:05 सर. तो व्हाई आर यू विशिंग मी गुड मॉर्निंग सर, तो ही सेड कि सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट
0: अच्छा
1: विश हिम गुड मॉर्निंग. बोलता इफ देर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग,
0: जी
1: बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट. ही पुट अप सन अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो,
0: जी
1: सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली. देन ही कॉल्ड फॉर मी,
0: जी
1: आई इंटर्ड सल्यूटेड हिम एंड ही पुट अप ऑल दोज क्वेश्चन टू मी एंड स्ट्रेट वे जो ही उन्होंने सवाल सारे मैं फटाफट जवाब दिया
0: जी
1: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू
0: अच्छा
1: कैरी ऑन.
0: और आपको
1: एंड
0: सिलेक्ट कर लिया
1: ही इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी
0: जी।
1: यू ट्राई फॉर कमीशन, वाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन. आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम मेट्रिकुलेट ओनली, आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द
0: फुलफिल द
1: इमरजेंसी
0: जी
1: कमीशन.
0: क्राइटेरिया
1: एंड
0: जी
1: ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी तो आप एसीसी अप्लाई करिए,
0: जी
1: यू अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सिलेक्टेड. एंड माइंड यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक, देयर
0: अच्छा
1: वर 63 कैंडिडेट्स फ्रॉम माई रेजिमेंट दोज हु अपियर फॉर इनिशियल आर्मी कैडेट कॉलेज
0: जी
1: ऑल द टेस्ट एंड ऑल दैट. आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट सिलेक्टेड आउट ऑफ थ्री
0: अच्छा
1: कैंडिडेट्स आउट ऑफ
0: 63 में से
1: 63
0: आप जी।
1: जो कि SSB तक पहुंचे.
0: तो ये मोटिवेशन सर आपको
1: ये
0: सीओ साहब से
1: मोटिवेशन
0: मिला
1: मोटिवेशन दैट
0: जी
1: वे आई गॉट मोटिवेटेड
0: जी
1: एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक. आई हैड वेरी गुड
0: बिल्कुल
1: कैरियर थ्रू आउट माई आर्मी कैडेट कॉलेज देन IMA एंड वेन आई पास आउट फ्रॉम देयर यू आस्क्ड मी दैट हाउ यू गॉट इनटू इन्फेंट्री
0: जी
1: दैट टू राजपूत

0: राइफल।
1: जी
0: सो ऑन दैट आई जस्ट टेल यू, ये वहां पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे
1: जी
0: आईएमए के अंदर
1: जी,
0: वो राजपूतान राइफल थे, मेजर शर्मा साहब थे।
1: अच्छा।
0: जो कि वार वेटरन थे और वीआरसी डेकोरेट थे।
1: अच्छा।
0: सो आई वाज वेरी आउटस्टैंडिंग, माइंड यू आई मस्ट बी प्राउड ऑफ टेलिंग यू ऑल्सो, आई हैव प्लेड वॉलीबॉल नेशनल लेवल एंड बास्केटबॉल स्टेप डाउन एंड आई वॉज गुड बॉक्सर एंड क्रॉस कंट्री रनर ऑफ द टॉप क्लास इन अकेडमी।
1: वॉलीबॉल, बॉक्सिंग और रनिंग।
0: और रनिंग,
1: क्या बात है।
0: And volleyball national level national is something level, very
1: volleyball.
0: So he was so impressed and he wanted me to go to his regiment only.
1: Achha.
0: And that's why, whereas my CO that time who got me selected for ACC,
1: ji,
0: he
1: ji.
0: Wanted me that I should join signals, but Achha. I got into Rajputana Rifles and I was mighty happy to be with the Rajputana Rifles.
1: So sir, आपको ज्यादा मजा किसमें आया, मतलब आपको लगता है कि Rajputana Rifles ही आपके लिए जो है एक dream था?
0: देखिए ऐसा मैं बताएं कि आर्मी ज्वाइन करना एज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एज ए डबल मैटर ऑफ प्राइड एंड इफ यू गेट इनटू इन्फेंट्री नथिंग लाइक दैट।
1: अच्छा।
0: एंड अमंग इन्फेंट्री Rajputana Rifles
1: टॉप
0: इज अ टॉप।
1: अच्छा।
0: एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दिस दैट आई गॉट इनटू Rajputana Rifles।
1: क्या बात है सर।
0: यू नो माय एल्डर सन इज ऑल्सो फ्रॉम Rajputana Rifles।
1: यस सर।
0: And
1: जी
0: that why also because Rajputana Rifles is one of the very good regiment
1: जी,
0: and he is the one
1: जी। क्या बात है सर। हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया, हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटर रहे 1971 वॉर के, तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिसनर से बताना चाहेंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आप बने रहे हमारे साथ, यह देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ।

0: यह देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ, सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी,
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वाज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी,
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूताना राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में
1: yeah.
0: जी, तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियां नहीं थी, लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूताना राइफल्स एंड ही हैपन टू बी ए वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज एमएस लेफ्टिनेंट जनरल, ही वॉज द वन हु पुल्ड अप द कंप्लीट डिवीजन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी eventuality or any war type thing at that time.
0: Ji.
1: So he was the one and I was with the Bravo company commander.
0: Achha.
1: In Punch sector where Punch is other side of the Punch river and Ji. We were the other side of the this side of the Punch river and
0: Achha. Other side of the
1: हम इस साइड में थे।
0: अच्छा।
1: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में
0: जी,
1: पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है।
0: अच्छा।
1: एंड आई वाज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माय पोस्ट।

0: अक्रॉस द रिवर, पुंच रिवर,
1: मतलब आमने सामने की,
0: आमने सामने थे
1: बिल्कुल,
0: और उनके पास में वहां पे आरसीएल गन लगी हुई थी और एमएमजी लगी हुई थी, वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी, दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम।
1: अच्छा बिल्कुल,
0: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप, एंड आई हैड यू नो कंपनी वाज डिप्लॉयड ऑन 3 पोस्ट।
1: अच्छा,
0: एंड आई वाज ऑन द मिडिल पोस्ट, मिडिल पोस्ट जो पहाड़ी का था
1: जी,
0: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे,
1: ठीक है,
0: और सामने से फायर वगैरह आते थे। 4 तारीख 4th of December
1: जी
0: फायरिंग स्टार्ट हो गया, तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे, और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनको हौसला बढ़ाना है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वॉज गोइंग ऑन आई नेवर बॉदर्ड, फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी, अदर जो कि जमीन पिकेट थी
1: जी,
0: ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर अदर साइड,
1: अच्छा,
0: ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन,
1: अच्छा,
0: एंड आई मेट ऑल द पर्सन एंड जवानों का जवानों का हौसला बढ़ाते बढ़ाते, देन आई वेंट टू द अदर पिकेट एंड देन टू माई ओन पिकेट, एंड कंप्लीट नाइट आई वॉज एक्टिव विद दैट
1: मीटिंग द पीपल,
0: पूरी रात रही, एंड व्हेन आई
1: वेट करते रहे, व्हेन आई
0: यू नो वी हैव द कमांड पोस्ट,
1: अच्छा,
0: एंड कमांड पोस्ट इज सॉर्ट ऑफ ए वेरी वेरी सॉलिड बंकर फ्रॉम वेयर यू कुड ऑब्जर्व एंड देन डायरेक्ट द फायरिंग एंड अदर थिंग ऑल्सो एंड कमांड योर कंपनी ऑल्सो।
1: बिल्कुल,
0: सो फ्रॉम द कमांड पोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, इट वॉज गोइंग टू बी डे लाइट, आई गॉट आउट फ्रॉम माई कमांड पोस्ट एंड वॉज गोइंग फॉर ए पी प्लेस
1: जी,
0: टॉयलेट
1: जी,
0: एंड टॉयलेट वॉज यू नो ऑल टेम्परेरी
1: जी, बिल्कुल,
0: टीन से टीन के टार्मिक के टीन होते हैं
1: जी,
0: ड्रम
1: जी,
0: उसको कट करके एक पर बड़े से पत्थर के साथ में
1: उसको बनाया जाता है,
0: बनाया गया
1: ठीक है,
0: टेम्परेरी टाइप
1: जी,
0: सो आई वॉज गोइंग टू दैट वन, सो बंकर टू बंकर, और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रंचेज, कम्युनिकेशन ट्रंचेज आर द यू नो सॉर्ट ऑफ से अबाउट 5.5-6 feet डीप,
1: अच्छा,
0: थ्रू विच यू कैन वॉक,
1: अच्छा, उसके, अच्छा, उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है,
0: अच्छा, चल के जाना होता है
1: जी,
0: सो व्हेन आई वाज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइम अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन
1: जी,
0: दैट टाइम देयर वाज अ साउंड ऑफ ए आरसीएल फायर,
1: अच्छा,
0: व्हेन द आरसीएल फायर केम तो माय ऑपरेटर वाज विद मी
1: जी,
0: एंड ही वॉज कमिंग आउट विद मी कि मेजर साहब कहां जा रहे हैं
1: जी,
0: तो वो मेरे साथ जो ही निकला उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल
1: जी,
0: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया,
1: अच्छा,
0: और बोला अरे सब मरोगे, एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज, इट वॉज थ्रोन अप इन पीसेस एंड द बिग द रॉक ओवर देयर, इट वॉज ऑल ब्लोन अप एंड वी आर रियली इन डेंजर एंड इट वॉज ए गुड लक ऑफ माइन,
1: कुछ सेकंड
0: थैंक
1: कही सिर्फ
0: यस,
1: मतलब वो जो सामना होने वाला था,
0: इट वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट थिंग, आई वुड हैव बीन पीसेस, नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे,
1: बिल्कुल,
0: सो दैट वाज द वन, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे अर्ली आफ्टरनून वी गॉट ए ऑर्डर दैट यू हैव टू मूव आउट टू अनदर बटालियन दैट इज बनवट सेक्टर एंड डिफेंड ए कंपनी ऑफ अदर 6 सिख which was in danger, which was attacked that night.
1: अच्छा, तो आपको उनकी मदद की,
0: next night they were to be attacked.
1: जी.
0: So that one of the FDL behind that is number FDLs were numbered at 405, 406.
1: अच्छा.
0: So 406 was in danger. It was encircled by the enemy.
1: अच्छा.
0: So I was told that your company will go and reinforce that 405 picket so that you we could fight back the enemies. So I moved my company before last light to the that side towards Punch. We had to go across the Punch River. Then Punch township is there. Pass through that place and the climb up almost about 2,000 square feet I say. And the brigade headquarters was at the Punch River.
1: Achha.
0: Punch headquarters, the brigade one. So there was a Jhula Bridge which was to be crossed.
1: अच्छा,
0: जो बाई the झूला ब्रिज, झूला ब्रिज ऑन पुंच वॉज द वन विच वॉज अ वुडन टाइप एंड यू नो ओनली इट वॉज ओनली फॉर टू व्हीलर्स,
1: अच्छा,
0: पैदल चल के जाने के लिए, सो

0: I was called by the battalion commander for the briefing. So with my escort, two escort and operators, we went to the battalion commander, and he briefed me that you have to go and do this work. Chesik was the battalion which was deployed that side at 405, 406. And you have to go and clear the saddle between Black Rock, between these two FDLs.
1: Achha.
0: And then join the company which is fighting, which is likely to fight this night or next
1: day. जैसे आपने बताया कि उधर से अटैक हो चुका था और
0: हाँ जी उनको जाके आपने reinforce करना है.
1: Reinforce करना है.
0: So after bathing, I had to I got a RCL jeep.
1: Achha.
0: I with my escort and all that got into RCL jeep while moving down towards the that bridge.
1: Achha.
0: The traffic was too much because that time there were all convoys loaded with the ammunition, all that artillery convoys. Those were the all lined up on the road, and my jeep was not able to get through. So I got on my feet.
1: Achha.
0: With my
1: with my
0: escort and all that.
1: Achha.
0: And I went around say 3 to 5 kilometers walking. When I reached to the Jhula Bridge, I found my company was stuck over there. They were all in position and firing was going on from both the sides.
1: अच्छा जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त भी ये सब फायरिंग
0: मेरी बाइक मेरी जो कंपनी थी वो पुंछ रिवर के इस तरफ झूला ब्रिज के इस तरफ
1: अदर झूले के उस तरफ झूला ब्रिज के तरफ जी
0: पुंछ के परली तरफ से भी फायर आ रहा था और इधर से ये लोग भी फायर कर रहे थे. सो आई हैड टू रादर टू सबाल्टर्न टू यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट वार्डने एंड लेफ्टिनेंट मल्होत्रा
1: जी
0: एंड जेसीओज वर देयर. कंपनी जैसे से मैंने पूछा कि रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है
1: जी
0: रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है
1: जी.
0: तो उन्होंने बताया सर उधर सामने से फायर आ रहा है. मैं क्या फायर क्यों किया बोल सर ऐसा है झूला ब्रिज के ऊपर से 3-4 लोग आए थे.
1: अच्छा.
0: और जब वो आने लगे उतर रहे थे तो हमने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया और वो भागने लगे. तो भागने लगे तो हमारे जवान ने फायर कर दिया. मैंने बोला तुम्हारे को बताया था ऐसे तो हरकत नहीं करना वहां जाके कंपनी को पोजीशन दे देना मैं आके ज्वाइन करूंगा आपको. तुमने फायर क्यों खोला बोले सर हमने सोचा एनिमी है तो जवानों ने फायर खोल दिया. मैं ऑर्डर किसने दिया बोले साहब मैंने दिया था. मैं चलो कोई बात नहीं है. देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिगेड BM.
1: अच्छा.
0: आई सेड माई कंपनी टू क्रॉस झूला ब्रिज एंड गो टू बनवट सेक्टर टू हेल्प आउट चेसिक एंड हु इज फायरिंग फ्रॉम अदर साइड. देयर वाज 80 कंपनी एटी कंपनी दोज आर यू नो विद द एनिमल्स म्यूल्स एंड ऑल दैट. दे थॉट के देयर इज एनिमी टू अदर साइड एंड दे आर फायरिंग टुवर्ड्स अस एंड वी आर फायरिंग दैट साइड.
1: जी सर एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में जब जा रहे हैं दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते हैं.
0: जो फीलिंग होती है जो फीलिंग होती है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है. हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है. हम तो पता है हम जीतेंगे हम मारेंगे हम अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे. अभी बताता हूँ आगे क्या क्या हुआ. तो BM साहब ने बोला और AT वाले मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए और आप पहुंचिए जल्दी से. सो you know climb was quite big when the firing stopped.
1: Achha.
0: I moved my company across the Jhula Bridge then started climbing up. So climbing up all that toward that Malhotra platoon was leading and where we come in single line.
1: Achha.
0: Track ke upar jaise pahadon ke chadte hain to single line pe ja rahe the. Everybody was tired and it was going to be early morning. Achha. But before first light I was to reach
1: puri raat ko aapko chadhai chalni thi.
0: Before first light I was to do the operation also. That was my task. Because if it was the daylight, then I wouldn't be able to do the needful.
1: बिल्कुल. तो इतनी tough climbing के बाद आपको operation भी अपना शुरू करना
0: complete करना था.
1: बिल्कुल.
0: So when we are nearing that objective,
1: जी.
0: Before I mean the 405,
1: जी.
0: The 405 was the headquarter of Chesik, and the CO was there.
1: अच्छा.
0: And went, all those people, those who are the tail men, those control करते हैं. तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था. उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था. सो टाइम वाज रनिंग शॉर्ट. तो व्हेन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे
1: जी.
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ. मोल साहब मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए. आई कॉट होल्ड ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट्स द रॉन्ग विद यू व्हाई यू स्टॉप.

0: Moses is tired. Mega, you get back. And I was the one to lead the company, reach to the 405 FDL. And I met the CEO. CEO briefed me. I requested CEO, okay, sir, give me two escort, those who can tell me from where the fire is coming.
1: Gee.
0: So that my jawans can attack that one and I don't suffer casualties.
1: Gee.
0: So when he told me that, okay, Major Swain is the company commander, gee, and you take two jawans from him, they will tell you from where the fire is coming. So when I went to him, Major Swain said, no, I am already under the attack, and I will not be able to give anything. So I walked back to commanding officer of Chesik, and I said, sir, your company commander is not giving me escort. Then he said, okay, the task is given to you. Make a well, Colonel so-and-so, you are talking to the company commander of 9th Battalion Bravo Company, and I'll see that my task is completed before the first light, and I'm going. So his adjutant came running with me, and he asked that Major Swain to give me escort, and I put up an attack sort of thing, I should say.
1: Okay,
0: we had to go down. We had to go down in the valley, and climb up again, and then there was a black rock. From there, the MMG and LMG of Pakistanis, they were firing. There were a number of mules, those were killed, and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
1: Gee.
0: But before the first light, I was able to climb up, and that the enemy left his that location, leaving some ammunition in one of the... They ran away from there.
1: Gee.
0: And I joined Major Punjab and Major Paddao over there, and there were 36 Pakistanis, those were killed by that company that night itself. So next morning we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, a hot breakfast with the Major Punjab and all. And then next task was given to me to go to help out other company, because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division.
1: Gee.
0: With my young Joes and all that. And I had stood first in one of the competition which was conducted at the Div level, at the Div headquarters at Rajouri. And the Div commander himself has given this praise of mine that Bravo Company commander, Major K.S. Kamar Bhardwaj, is one of the outstanding officer in this competition training we had in the Div Battle School.
1: जी,
0: सो दैट वाज द रेपुटेशन ऑफ दैट थिंग.
1: बिल्कुल सर, आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा, उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दिया, रोल प्ले किया, तो वो वाकई यादगार है. और जैसे कि आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ है.
0: अभी आप बात कर रहे हैं, अभी वैसा जोश आ रहा है, अभी भी मैं उसी लड़ाई, उसी पहाड़ और उसी ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया, और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से मैं फिर से
1: आप उन यादों में पहुंच गए, और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया. आपकी बातों में मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं आपकी बातों में और आपकी यादों में, जहां आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे.
0: वेरी नाइस टू टॉक ऑन दैट लाइन.
1: जी, और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीजें आपसे जाने, जैसे आपने 1971 वॉर की, आपने जो इंसिडेंट बताया यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किया हमारे साथ. सर, आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं, उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं, तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है वो हर तरह से. जैसे कि आपने भी कहा, आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे वॉलीबॉल के, बॉक्सर भी आप रहे, आप एक बेहतरीन रनर भी थे, तो आर्मी इन सब चीजों में भी आगे रहती है हमेशा, वो वहां भी कीर्तिमान स्थापित करती है.
0: राइट फ्रॉम द डे वन.
1: जी,
0: फिजिकल साइड हैड बीन माय द बेस्ट आई से माय स्ट्रेंथ एंड देन माय मोटिवेशन,
1: माय
0: एम एंड डिटरमिनेशन, ऑल दोस थिंग्स. Today I can say again that I am self-made man is in front of you.
1: Okay,
0: from that background of a farmer family, at my own, without any sipares or without any

0: रिकमेंडेशन और ड्राइव और एनीथिंग,
1: बिल्कुल
0: आई
1: सर,
0: वॉज द वन टू डू ऑल दिस थिंग
1: बिल्कुल, आपने
0: एंड
1: बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की और आपने जो अचीवमेंट हासिल करी वो आपकी अपनी अर्न की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया।
0: यू विल बी प्राउड टू टेल यू दैट मैंने जब बटालियन में
1: जी
0: कदम रखा
1: जी
0: तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा। मेरे फिजिकल में इतना दम था
1: जी
0: कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़
1: क्या
0: दीजिए।
1: बात है सर,
0: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे
1: जी
0: उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया।
1: क्या बात,
0: एंड माई क्रॉस कंट्री रनिंग और दे लॉट ऑफ अदर कंपटीशन, आई यूज टू कैरी इवन द हैवी लोड ऑफ आरसीएल, और
1: अच्छा आरसीएल सर बहुत भारी लहर
0: उसको
1: होती
0: कैरी
1: है।
0: करना पड़ता है,
1: अच्छा
0: MMG कैरी करनी पड़ती है, 3 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं,
1: अच्छा उसको फिर
0: तो उसको
1: कंबाइन
0: ले
1: करके,
0: करके हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़े लगानी पड़ती है।
1: अच्छा
0: सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान ऑल्सो विद ऑल दोट
1: सही
0: एंड
1: है, बहुत बड़ी
0: माई
1: बात है
0: माई CO एंड माई TIC एंड माई बटालियन यूज
1: जी।
0: टू कॉल मी रनिंग हॉर्स,
1: रनिंग हॉर्स,
0: रनिंग
1: क्या
0: हॉर्स।
1: बात है सर
0: सो दैट वॉज द
1: जी,
0: एंड माइंड यू दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो मैरिड एंड फादर ऑफ वन डॉटर,
1: जी
0: देन सन वॉज ऑल्सो बॉर्न देयर ओनली
1: अच्छा
0: जामनगर,
1: क्या बात है सर,
0: एंड
1: कर्नल
0: आफ्टर दैट आई हैड गॉन टू द वॉर।
1: जी, कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं। और यहां पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं, 1971 वॉर वेटरन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूं जो आपकी पसंद से मैंने निकाला था। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ। आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भारद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107007 पर, और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान आज के शो में कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहां पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की आपके बारे में बात की लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहां पर करना चाहूंगा जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया जान की आहुति दी और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज आपके सुपुत्र जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया शहीद हुए वो और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था एक प्राउड मोमेंट भी था लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड कैसे याद करते हैं। जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर आई टेल यू ये मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड ही वाज माय बेस्ट गाइड ही वाज माय बेस्ट फादर एडवाइजर व्हाट सो यू कॉल बिकॉज इट हैपेंड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न एंड देन ही वाज टू गो फॉर एसएसबी दैट टाइम आल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफी कोशिश की कि हम इसको नहीं भेजे बट उसने हमारे को पर्स्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूँ एसएसबी में अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहां एसएसबी में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लेगा जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर टू ज्वाइन सीएसडी आईएमए ज्वाइन करके।
0: अच्छा
1: तो कमांड डिफेंस सर्विस ज्वाइन क्लियर करके और एसएसबी वगैरह क्लियर करके आईएमए से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द एएससी और एओसी।
0: अच्छा
1: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर वन ऑफ द ऑफिसर ओवर देयर विद माई फ्रेंड आई हैड गॉन टू हिम एंड आई सेड कि भाई बेटा पास हो रहा है तो मेजर हुड्डा वाज देयर
0: जी
1: ही सेड कि सर उसको हम आर्मर्ड कोर तो और मैकेनाइज इंफेंट्री नहीं दे पाएंगे राजदेव दे देते हैं। आई टोल्ड हिम मैं कह रहा वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे आप
0: बिल्कुल
1: ठीक है तो उसको मैं क्या हमने राजीव नहीं चाहिए उसको तो राजीव तो उसका बाप है उसका भाई है तो उसका पेरेंटल हक है वो तो मिलेगा बट वी वांट हिम टू गो टू नेवी व्हाट यू कॉल एएससी और एओसी बिकॉज दैट टाइम देर वाज सम हिच इन माय माइंड एंड माय वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है पता नहीं क्यों ऐसा ही पहले ही लग रहा था।
0: लेकिन सर उस उनमें उमंग में आपका वाला ही वो जो

0: था अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ उनको टाइगर कहकर पुकारते थे।
1: I am coming to that one, तो उसको when he passed out and when he came to know कि ये मेरे को एसी मिली है
0: जी,
1: तो मैंने वो उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही वाज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, व्हाई यू गॉट मी इन एसी। आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजरीफ मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना, अगर आपको राजरीफ ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजरीफ अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यू जज अबाउट यूर सेल्फ।
0: ही
1: सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहां मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए।
0: अच्छा,
1: ही ज्वाइंट 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया
0: जी,
1: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंडर सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशन। ही वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑफ द टाइम, ही कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे। इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा, एक डी के शाह उसी कोर्समेट, he was also with the 7 jat and there is a ghatak platoon
0: ji ji,
1: so this boy Umang was doing ghatak platoon commander for 1 year and during that operation he has killed 15 terrorists
0: ji,
1: and these 4 officers those who joined together 7 jat they had taken a sort of pledge that jab tak hamari platoon yahan hai aur hum yahan par hain koi terrorist hamare area se
0: जिंदा नहीं जा सकेगा
1: अंदर घुस नहीं सकेगा
0: एंड
1: दैट ही डिड। कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 months अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया एंड उमंग वाज डूइंग एडजुटेंट। उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिडनाइट, ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर। आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते हुए तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है, व्हाट उसके ब्रदर है दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पड़ना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट। दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे। सो दैट वॉज डन। देन उमंग का जो बताया ऑपरेशन
0: जी,
1: ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 years, ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था, ही केम ऑन 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के वापस जब वापस गया सो ही रीच देयर ऑन द 17th इवनिंग
0: जी,
1: रादर 18th इवनिंग
0: जी,
1: 18th इवनिंग ही रीच देयर
0: जी
1: and he was there to have his farewell parties and all that and pick up a trophy and get out from the battalion doing good job. That time there was some information on news and all that that there are some terrorists those who are crossing the border, so he went to the CO and requested him that I want to go for the operation. So CO told him no, you send somebody, you will not go, you are already posted out and you have to go, that is enough for you. So this boy insisted on him and the third time he got ready, took some people with him and went for the operation himself. Then CO warned him that go up to so and so location and conduct the operation, take care, apna dhyan rakho
0: ji.
1: But this boy full of josh and when he went with the ambush party as the ambush commander he put the ambush over there and allowed the 6 terrorists to get into the ambush and then he opened the fire. First terrorist was killed by his fire, then other people personal engaged the ambush terrorist. One terrorist was running back towards the dhara, one of the dhara is the यूनोखंड टाइप ऑफ मकान पहाड़ों में जिनमें डंगर उंगर बांधते हैं, तो उसमें वो शेल्टर लेने के लिए भाग रहा था। उमंग रेन पैरल टू हेम एंड शॉट एट हेम ऑल्सो, उमंग ऑल्सो गॉट ए शॉट फ्रॉम साइड फ्रॉम दिस फेलो और एनी टेररिस्ट दोज हु आर स्टिल अलाइव।
0: आमने सामने की लड़ाई थी उस टेररिस्ट के साथ
1: फ्रॉम 6 मीटर इटसेल्फ

0: each other, shouted at each other, and he said, kafir and all that. He said, bloody fool, I'll kill you. And he shot him down over there. And he told his operator, रामकिशन अपने सी ओ साहब को बोलो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, जवानों को फायर जारी रखे, कोई बच के नहीं जाना चाहिए और मेरे शायद कहीं लग गई है. बाई दैट टाइम द ऑपरेटर अप्रोच देम, उमंग वॉज नो मोर.
1: अच्छा, तो उस मोमेंट पर उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान.
0: जी,
1: छह टेररिस्ट जो मारे गए,
0: जिस टाइम पंद्रह पहले मार चुके थे, छह मारे, 21 टेररिस्ट.
1: जी, तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए. सर, हम यहां पर, समय बहुत कम बचा है, मैं चाहूंगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊं.
0: जी,
1: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए, और उसके बाद ये मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू कर्नल रेस्पेक्टेड सर एंड आरजे सर, आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी. आई बो माई हेड विद इमेंस रेस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आर बिलव्ड इंडियन आर्मी. You protected our borders with unwavering courage. You served the nation with selfless dedication, and you inspired every Indian with your sacrifices. Because of you, we live in freedom and peace. So, entire nation is forever indebted to you, Indian Army. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. Yeh hai sir Shankar Lodh from Kakrola, Dwarka, Sector 15, Delhi se.
0: Thank you very much.
1: Aur आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. यशवंत आडमुटे धाराशिव हैं सर, ये महाराष्ट्र से, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार. भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी. वेलकम टू द शो. श्रीकांत हैं सर, ये टोलगेट त्रिची तमिलनाडु से. चरण कुमार हैं सर, ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी से. और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर.
0: हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, सबको, हमारे साथियों को, सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक
1: जी. और सर हैं ये शांतचारा बादीगर कोकानूर हरिहार से, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका. रिस्पेक्टेड सर, संदेश टू सोल्जर्स इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम. यू प्रेजेंट ब्यूटिफुली, रिमाइंडिंग अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस, सर्विसेस, करेज एंड पैट्रियोटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स who protect our nation day and night at the borders. Soldiers stay away from their families and perform their duties for the safety and security of our countrymen. Their dedication and selfless services are truly commendable, sir. Ye keh rahe hain. Heartfelt thanks to you for bringing such a meaningful program to us. Thank you so much. Aapne hamein suna aur aapne hamein message kiya. Aur hain sir ye Colonel Kamar Bharadwaj ji, Jai Hind. 71 aamne samne ke war ka vivaran sunkar man utsah se bhar gaya hai. कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ही कह रहे हैं.
0: थैंक यू सो मच
1: जी. और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हैं ये. और ये है मैसेज, नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी, आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना. जय भारत माता की जय, वंदे मातरम. और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा है. ये
0: अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना
1: जी सर. अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास. मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद.
0: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
1: जी,
0: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल, माना हुआ पब्लिक स्कूल है, CBSE 10+2
1: जी.
0: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19, अंडर 17
1: जी,
0: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन
1: जी.
0: एंड आई हैड ए होस्टल आल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द बॉयज.
1: आज सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें.
0: सोशल सर्विस के उमंग के जाने के बाद में हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के वन रैंक वन पेंशन, ये
1: अच्छा.
0: हमारा पूरा फाइट था और आज हमारे पुराने

0: Chennai Silks. Let the celebrations begin.
1: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: அல்லது செபி சாத்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: பாடல் வந்துட்டு கேட்டு இணைந்திருங்கள்.